सोई दुख न तिसे पे आपत कोई अड़िल सुने गुंग जो याहे सो रस न पावे सुने मूड़ चित लाए चतुरता आवे दुख दर्द भौ निकट न तिन नर के रह हो जो या की एक बार चौपाई को कहे चौपाई संबद सत्रह सहस पणिजय अर्ध सहस पुन तीन कहि जय भादरव सुधरी अष्टमी रविवार तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र।

कला जित कर तारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिन कहो से नाम हर कह लागे, कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे, आनंद सुन।

पढ़े गुरबाणी जे मंदा मन चितला के पढ़े गुरबाणी जे बंदा मन चितला के काम औखे तो औखे भी होण पूरे। इस बाणी दा जिन्हां ने अमल कीता होए बिच जहान दे अमर सूरे, जे ता बाणी नूं मनो बसार दिता पैणे जमा तो धौण दे बिच हूरे। गुरु नाम सिंघां ना किसे तरह साथ देना धर्म राज दे कीता जा खड़ा मूरे। उथे केवल एक गुरबाणी सहारा बनदी आ। मैं बेनती कर रहा सी कि संगतां आखण लगियां थोड़ी पातशाह नूं, पातशाह जी तुसी सरूप अपने सीस उत्ते टकाओ ते हरिमंदर साहब च लिजा के प्रकाश करिए। साहबां ने गल विच पल्ला पाया, दोवें हथ जोड़े, आंदे संगत जी मेरा सीस गुरु ग्रंथ साहब दे सरूप दा भार नहीं चल सकदा। संगतां पुछण लगियां क्यों नहीं चल सकदा, आंदे जी एदे विच जिहड़ी बाणी आ ना, मैं साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज दे दर्शन नहीं कीते, मैं गुरु अंगद देव दे दर्शन नहीं कीते, मैं गुरु अमरदास दे दर्शन नहीं कीते, मैं सतगुरु कबीर दे दर्शन नहीं कीते, मैं सतगुरु रविदास जी दे दर्शन नहीं कीते, धन्ने दे नहीं कीते, सदने दे नहीं कीते, सहन दे नहीं कीते। इस लई बाबा बुढ़ा जी ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी तो लैके हुण तक पांच गुरु साहिबां दे दर्शन कीते आ, इहदे हकदार ने बाबा बुढ़ा जी। बाबा बुढ़ा जी ने शीश उत्ते महाराज दा सरूप रखिया बड़े सत्कार नाल। साहिब सोढ़ी पातशाह चौर कर रहे ने अपने हथीं, संगतां शब्द पढ़दियां होईयां। हरिमंदर साहब अंदर महाराज का स्वरूप लैके आए ने, ते सोढ़ी पातशाह ने आख्या बाबा जी हुक्म लईए। बाबा बुढ़ा जी ने प्रकाश कीता, हुक्मनामा आया सी संतां के कारज आप खलोआ। किन्ना सिख नूं माण बख्शिया सोढ़ी पातशाह ने बाबा बुढ़ा जी नूं भी, ये हकदार ने इस गल दे। अच्छा, बाबा बुढ़े अंदर भी बड़ा संतोख सी, पंजां गुरुआं नूं आप हथीं गुरता गद्दी ते बिठाया पर कदी जिताया नहीं। ते मैं ज्यादा सेवा कीती ते मैं हकदार हां गुरता गद्दी दा। अज आ बहुत सारे साडे संत गुरु दी फीलिंग लई जांदे आ, बन नहीं सकदे क्योंकि तत्ती तवी ते कौन बैठूगा, कोई नहीं बह सकता। दिल्ली दे चांदनी चौक अंदर शीश भी कोई नहीं जाके बार सकता। जे लोड़ पै गए कलगीधर पातशाह वांगू चार पुत्र भी कोई नहीं बार सकता। सो बाबा बुढ़ा जी ने हरिमंदर साहब अंदर प्रकाश करके हुक्मनामा लिया। आखरी कविता आपके सामने ढाडी जथा है, इउं पेश कर रहा हां।

माह हुआ सूरज एक रुत अनेक नानक करते के करते केते वेस राग तनासरी महला पहला गगन मै थाल रव चंद दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती तूप मल्याण लो पवन चवरो करे सगल बन राय फूलंत ज्योति कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ सहस तब नैन नन नैन है तोहे कहो सहस मूरत नना एक तो ही सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही सब मह ज्योत ज्योत है सोए तिस दै चानन सब मह चानन होए गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत सुभावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देह नानक सारंक होए जाते तेरै नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर भ भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूरब लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साध ना जानिया तिन अंतर हों मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चल है चुबै दुख पाव है जम काल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेसर भसोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंचवा करो बिनंती सुनहो मेरे मीता संत टहल की बेला ईहा खाट चलहो हर लाहा आगै बसन सुहेला आवद कटै दिन सरैणा रे मन गुर मिल काज सवारे रहाओ एहो संसार विकार संसे मह तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिस हे जगाए पी आवै एहो रस अकथ कथा तिन जानी जा को आए सोई बिहज हो हर गुरते मन है बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे

जाए आप पावे लय मिलाए तिते नेड़े नाही को दूर नानक नाम रहा पार पूर बसंत महला तीजा गुर सबदे हर चेत सुभाए ना राम नाम रस रहे गाए कोट कुटंतर के

चल जाए। वृपागे हर नाम बिचारा छूटे राम नाम दुख सारा हृदय से सो बाहर पसारा नानक जान सब पावन हारा बसंत महला तीजा एक तुके

सुवरिया पाखंड परम पाव करता केर दे अंतर माया माया साधु पुरख पुरख पत पाया अज्ञान अंधेर गवाया जगन्नाथ जगदीश गोसाई कर कृपा सार मिलावे नानक शांत हुए मन अंतर नित हृदय हर गुण गावे बसंत महला चौथा हिंडोल

हर किया सकल पवन चय पर हर शोभा हर प्रवजन चय जात अजात कोई प्रवत्यावे सपूरे मानस तिन चय से तन वड वड पूरे हर जन जिन हर तारियो हर उर चय हम टींडे टीम बहुत पारी हर तार कृपा प्रभु मेरे चय जन नानक गुरपो पाया जन नानक गुरु पाया हर तुठे हम किए पतत पविचे बसंत हंडोल महला चौथा मेरा एक घन मनवा रह न सके नित हर हर नाम रस गीत दे ज्यों बारिक रसिक पर्यो तन माता तिन थन काढ़े बिलल बलि दे

मन खिन खिन परम परम बहुत आवै तिल करन वासा पाइए गुरु अंकद शब्द दारु सिर तारियो करम अंदर आन वसाइए गोविंद जियो सा संगत मिल हर त्याइए होमे रोग गया सुख पाया हर सहज समाध लगाइए राहो कर रतन लाल बहुमान कला दे मन पर म्याला ना सकाइए जो उडा को गोज खन काटे जो सतगुरु वस लहाइए जने ऐसा सतगुरु साधना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाइए जन पदार्थ पुन फल पाया कौडी बदले जाइए

हर गुण गाइए। बसंत हंडोल महला चौथाया वृदान पया दुख विख्याद मन मुख सुंजे सुंज राम नाम खिन पर नहीं चेत्या जम पकरे काल सुलंजय।

दुख पांजर हर सरोस्तत तारोर दियंतर स्वामी सत्संगत मिल बुद लंज हर नाम में हम प्रीत लगाने हम हर बिटों को मंज जनके पूर मनोरथ हर प्रभ हर नाम देव हर लंज।

चरण कमल स्वयं लगोते आन कर कृपा प्रभु के नव दान तेरे संत जन के बच तुर जप नानक स्वामी सदा हजूर बसंत महला पंजमा सच परमेश्वर नित नवा गुरु कृपा ते नित चवा प्रभ रख

ठकै बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देश जसंतर गाए ताए किरतना का मित सुनाए ओ अपना भी जय आप खाए।

स्पर्श न साकै गहि भगत भगवान। जन्म जन का जन्म जन्म का संसा चूका रतन नाम जब पाया तृष्णा सकल विनाशी मन ते निज सुख माहे समाया। जाको होत दयाल कृपा निध सो गोविंद गुण गावै कहो नानक इबिद की संपै को गुरमुख पावै बसंत महला नौमा। मन कहाँ बिसरायो राम नाम तन मिल से जम स्यों परे काम रहाओ। ए जग तुए का पहार तैं साचा मान्या केह विचार तन दारा संपत गृहे कछ संग न चाले समझ ले। एक भगत नारायण होए संग कहो नानक भजत एक रंग बसंत महला नौमा। कहाँ पूल्यो रे झूठे लोभ लाग कछ बिगड़ो नाहिन अज हो जाग रहाओ। सम सुपने के एह जग जान बिन सैशन में साची मान संग तेरे हर बस्त नीत निसबासर पजताहे मीत। बार अंत की हुए सहाय कहो नानक गुण ताकै गाए बसंत महला पहला। अष्टपदियां कर पहला दूतुकियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जग कौआ नाम नहीं चीत नाम विसार गिरे देख पीत। मनुआ डोलै चीत अनीत जग स्यों टूटी झूठ प्रीत। काम क्रोध बिख बजर पार नाम बिना कैसे गुण चार रहाओ। कर बालू का घूमन घेर बरखस बाणी बुद बुदा हेर। मातर बूंद ते तर चक फेर सर्व ज्योत नामे की चेर। सर्व उपाय गुरु सिर मोर भगत करो पग लागो तोर। नाम रतो चाहो तुझ ओर नाम दुराए चले सो चोर। पत खोई बिख अंचल पाए साच नाम रतो पत स्यों कर जाए। जो कुछ कीनस प्रबर जाए पै माने निरपो मेरी माए। कामन चाहे सुंदर भोग आन फूल मीठे रस भोग। खिला बिकसे ते तो सोग प्रबर सुनागत कीनस होग। कापड़ पहरस अधिक सिगार माटी फूली रूप बिकार। आसा मनसा बांधो बार ना बिना सूना कर बार। गाशो पुत्री राज कुवार ना पणो सच दोत सवार। रिव सेवो प्र प्रेम प्या आधार गुर सबदी बिख त्यास निवार। मोहन मोहलिया मन मोहे गुर के शब्द पछाना तोहे। नानक ठाडे चाहे प्रभु द्वार तेरे नाम संतोखे कृपा तार। बसंत महला पहला। मन पूलो परमस आए जाए अत लुबद लुभानो बिखम माए। नह अस्तर दिसै एक पाए ज्यो मीन कुंडलिया कंठ पाए। मन पुलो समझस साच नाए गुर शब्द बिचारे सहज पाए रहाओ। मन पुलो परमस भवर तार बिन बिल बिरथे चाहे बहु बिकार। मैगल ज्यो फासस काम हार कड़ बंधन बांध्यो शीस मार। मन मुगदो दादर भगत हीन दर प्रश सरापी नाम बीन। ताके जात न पाती नाम लीन सब दुख सखाई गुणे बीन। मन चले न जाई ठाक राख बिन हरस राते पत ना साख। तू आपे सुरता आप राख तरन तारण देखे जाने कमाए। तरन तारण देखे जाने आप पुलाई किस कहो जाए। गुर मेले बिरथा कहो माए अवगण छोड़ो गुण कमाए। गुर शब्दी राता सच समाए सतगुर मिले मत उत्तम होए। मन निर्मल होमे कडे तोए सदा मुक्त बंद न सकै कोए। सदा नाम बखाने और न कोए मन हर कै पाणे आवै जाए। सब में एको किछ कहण न जाए सब हुक्म बरतै हुक्म समाए। दुख सुख सब तिसर जाए तू भुल न भुलो कदे नाहे। गुर शब्द सुनाए मत अगाहे तू मोटो ठाकुर शब्द माहे। मन नानक मान्या।

पीछे तिनका लेकर हांकती, जैसे पनकत थ्रुटट हांकती, सर तोबन चाली लाडली रहाओ, तोबी तोबे बिरह बिराता, हर चरण मेरा मन राता, पंडित नाम जो राम रहया, अपने भगत पर कर दया, बसंत बाणी रविदास जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, तुझे सुजनता कछु नाहे, पहरावा देखे ऊब जाहे, गर्भवती का ठाए नाही ठाओ, तेरी गर्दन ऊपर लवे काओ, तू काहे गर्भ बावली, जैसे पादों खूंब राज तू तिससे खरी उतावली रहाओ, जैसे क्रंक नहीं पायो भेद, तन सुगंध टूडे पर तन सुगंध टूडे परदेस, अप तन का जो करे विचार, तिस नहीं जम कंकर करे खुआर, पुत्र कृत्र का करे अहंकार, ठाकुर लेखा मंगन हार, फेड़े का दुख सहे जियो, पाछे किसे पुकार है पियो पियो, साधु की जो लेहे ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट, कह रविदास जो जपे नाम, तिस जात ना जन्म ना जोन काम, बसंत कबीर जियो एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, सुरे की जैसी तेरी चाल, तेरी पुंछड़ ऊपर चमक बाल, इस कर्म है सू तू ढूंढ खाहे, अवसर किस ही के तू मत ही जाहे रहाओ, चाकी चाटे चून खाहे, चाकी का चीथरा कहाँ ले जाहे, छीके पर तेरी बहुत डीठ, मत लकड़ी सोटा तेरी परे पीठ, कह कबीर भोग भले कीन, मत को मारे ईट टेम, राग सारंग चौप दे महला पहला एक ओंकार, चौप दे महला पहला कर पहला एक ओंकार, सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर,

जपमन राम नाम पढ़ो सार, राम नाम बिन थिर नहीं कोई, होर निहपल सब बिसथार रहाओ, क्या लीजे क्या तजिए बोरे, जो दिसे सो छार, जिस बिख्या को तुम अपनी कर जानो, सा छाड़ जाओ सिर पार, तिल तिल पल पल औद फुन काटे, बूझ न सके गवार, सो किच करे जे हाथ न चाले, यो साकत का आचार, संत जना के संग मिल बौरे, तो पावे मोख द्वार, बिन सत्संग सुके ने न पाया, जय पूछो वेद विचार, राणा राव सवे को चाले, झूठ छोड़ जाहे पसार, नानक संत सदा थिर निश्चल, जिन राम नाम आधार, सारंग महला चौथा कर तीजा धुपदा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काहे को

हर हर हर टेक सब दिन सब रात रहाओ। हर की उपमा अनक अनक अनक गुण गावत सुख नारद ब्रह्मादक तब गुण स्वामी गणन ना जात। तू हर ब्यंत तू हर ब्यंत तू हर स्वामी तू आपे जा आपे ही जाने अपनी भांत। हर कै निकट निकट हर जन ही हर कै निकट निकट हर निकट ही बाते ते हर के जन साधु।

सब सुखन को दाता, हर प्रीतम गुण गाओ रहाओ, हर घट घटे घट बसता, हर जल थले हर बसता, हर थान थनांतर बसता, मैं हर देखन

संगे तेरी किधर कीर्त कर्म कमाओ। एक ते लाख लाख ते एका तेरी गत में कह ना सकाओ। तू बेअंत तेरी मित नहीं पाई है सब तेरो खेल दिखाओ। साधन का संग साध स्यो गोष्ट हर साधन स्यो लेव लाओ। जन नानक पाया है गुरमत हर देहो दर्श मन चाओ। सारग मोहल्ला पांजवा हर जियो अंतर जामी जान करत बुराई मानख ते छुपाई

प्रभु भलाए उजड़ पाए नैफल सब करमान। सो ज्ञानी सो वैष्णो पढ़िया जिस करी कृपा भगवान, उन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल विसवान। क्या हम कथ किस कथ नहीं जान, प्रभु भावे तिवे बुलान, साध संगत की धूरी एक मांगो जन नानक पयो।

प्रभु मिलावो निमख दर्श पेखा गयो दृष्ट भई तब भीतर आयो मेरा मन अनदिन सीत लागयो कहो नानक रस मंगल गाए शब्द अनाहद बाजयो सारग महला पांजवा माई सत सत सत हर सत सत सद साधा बचन गुरु जो पूरे कहयो मैं छीक गांठरी बाधा रहाओ निसबासर निखेत्र बिनासी रस सिर बेनादा गिर बसदा जल पवन जाएगो एक साध बचन अटलादा अंड बिनासी जीर बिनासी उत्पल सेत बिनादा।

दृष्टमान है सगल बिनासी, एक साध बचन आगादा, आपे आप ही आपे सब आपन खेल दिखादा, पायो न जाई कहीं पांतरे, पायो न जाई।

व्यापद जय गुण गाय आनंद मंगल रूप तहां सदा सुख संपदा जहां सरवन हर कथा ना सुनिए तै महाभियान उदयानंद जहां कीर्तन साध संगत रास तै सगन बास फलानंद बिन सिमरन कोट बरख जीव सगली औद बिरथानंद एक निमक।

दीजे साध संगत कृपानद, नानक पूर रहो है सर्ब मै सगल गुणा बिद जानद। सारग महला पांजवा, अब मोय राम भरोसो पाए, जो जो शरण भरियो करो नारद, ते भवे तराय रहाओ। सुख सोय अर सहज समायो, सहसा गुरे गवाए, जो चाह

आवत को नानक अजर जन जरिया तैसी को बन आवत सारग महला पांजवा बिकी दिन रहन एवही गुदार गोबिंद न भजे।

जाई करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रहनाई मान अभिमान हो सकल त्यागो जो प्रे बात सुनाई देख चिरतर पई हो बिस्मना गुर सत गुर पुरख मलाई प्रभ रंग दयाल मुहे ग्रह में पाया जन नानक तब तब जाई सारग मोहल्ला पांजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक कोर में और तप करता निमक निमक गुण गाही रहाओ अनक जन्म परम तो ही आयो मानस जन्म दुल पहाई गर्भ जो न छोड़ जो निकस्यो तो लागो अन ठाही करे बराई ठगाई दिन रैन निफल कर्म कमाही कण नाही तुह तो गहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो और ज परयो कुस माही धर्म राय ज पकरस बवरे तो काल मुखाय उठ जाही सो मिलिया जो प्रभु मिलाया जिस महतक लेख लिखाही कहो नानका तिन जन बलहारी जो अलप रहे मन माही सारग मोहल्ला पांजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई जाके बिछरत होत मृतका ग्रह में रहन न पाई रहाओ जी ही प्राण को दाता जाके संग सोहाई

ने तुम ही सुगर सुजाना सगल जोग यार ज्ञान ध्यान एक निमख न कीमत जाना तुम ही नायक तुम्हें छत्रपात तुम पूर रहे भगवाना पावो दान संत सेवा हर नानक साध कुरबाना सारग मोहला पांजवा मीरे मन चीत्याए प्रेरंगा बिसरियो तंद।

बहुत बहुत धरिया अन कर आख सरूटा बिखमगार कर पहुंचे नाही संत सानथ पै लूटा बहुत खजाने मेरे पाले परिया अमोल लाल अखूटा जन नानक प्रभ कृपा धारी तो मन में हर रस कूटा सारंग मोहल्ला पांजवा अब मेरो ठाकर सिहो मन लीना प्राण दान गुर पूरे दिया और जायो जो जल मीना रहाओ काम क्रोध लोभ मद मत्सर ए अर्प सगल दान कीना मंत्र दड़ाए हर औखद गुर दियो तो मिट मिलियो सगल पर बिना ग्रह तेरा तू ठाकर मेरा गुर हो खोई प्रभ दीना को नानक मैं सहज कर पाया हर भक्त भंडार खजीना सारंग मोहल्ला पांजवा मोहन सब जी तेरे तू तार छुटे संघार निमख कृपा ते कूट ब्रह्मांड उधार रहाओ करे अरदास बहुत बेनती निमख निमख समहारे हो कृपाल दीन दुख पंजना हाथ दे निस्तार क्या ए भूपत बपरे कहिए कहो ए किसनो मारै राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हारे सारग मोहल्ला पांजवा अब वे धन पायो हर नामा पै चिंत त्रिसन सब बुझी है ए लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत खोजत भयो बैरागी फिर आयो दे गिरामा गुर कृपाल सौदा एहो जोरियो हथ चरियो लाल अगामा आन व्यापार बन जो करिए

पुरुष निरपो निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सत्य युगा।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

काल पर हरे प्रभ के सिमरन दुश्मन टरे प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागे प्रभ के सिमरन अंदन जागे प्रभ के सिमरन पाओ ना व्यापे प्रभ के सिमरन दुख ना संतापे प्रभ का सिमरन साध के संग सर्वनिधान नानक हर रंग प्रभ के सिमरन रिद सिद्ध नौ निद प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभु के सिमरन जब तप पूजा प्रभु के सिमरन बिनसे दूजा प्रभु के सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभु के सिमरन दरगे मानी प्रभु के सिमरन होए सो भला प्रभु के सिमरन सुफल भला से सिमरे जिने आप सिमराए नानक ताके लागू पाए प्रभु का सिमरन सब ते उच्चा प्रभु के सिमरन उदरे मूचा प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे प्रभु के सिमरन सब के सुजय प्रभु के सिमरन नाही जम त्रासा प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा प्रभु के सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिदमाए समाए प्रभु जी वसे साध की रसना नानक जन का दासन दसना प्रभु को सिमरे से तनवंते प्रभु को सिमरे से पदवंते प्रभु को सिमरे से जन प्रवान प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरे से बेमोहताजे प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे प्रभु को सिमरे से सुखवासी प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी सिमर

दिन से रात जन मन की मैल न दंते जा तिस देही को वो साधना करे मनते कबू न बिकिया टरे जल धोवे वो देह नीर शुद्ध गावे काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहु मूच बहु सियाण विजम का भोग्या पे अनक जतन कर तिस ना त्रापै पेख अनेक अगने मुझे कोट पाव दरगह नहीं सिजे शूट सनाही उप्याल मोह व्यापे माया जाल अवर करतूत सगली जमडाने गोविंद भजन बिन तिली माने हर का नाम जब तो दुख जाए नानक बोले सह सुवाए चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लूरे साध संगयो में शोरे जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जैसा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभिमान आप को जो जाने नीचा सो गनिये सब ते ऊंचा जाका मन होए सगल किरीना हर हर नाम दिन कर कर चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल शिष्ट साजना सुख दुख जन संदिष्टेता नानक पा पुन्नी लेपा निर धन को तन तेरो नाउन थामे को नाउ तेरा थाउ माने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देवो दान करन करावन हार स्वामी

परम गत पावे जे प्रसाद सुसै समावे ऐसा प्रत्याव रकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तुम प्रगट संसार तिस्पा को मूल न मनो विचार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूल तुदा को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू तासे राज जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपे जप सोए आप जपाए जपे सो नाओ आप गाओ आए सो हर गुण गाओ।

संसार नमीत कुटुंब निस्तारे। साधु के संग सोतन पावे, जिस धन ते सब को बरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग सुभा सुरदेवा। साधु के संग भाव पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्व थान गम नान, साध के संग सफल जन्म। साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट तो होत निहाल। साध के संग कलूक तारे, साध के संग नरक पर हरे। साध के संग यहाँ वहाँ सोहेला, साध संग विसर तर मेला। जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग नमिरथा जावे पार ब्रह्म। साध हृदय वसे नानक उदरे, साध सुन रसे। साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुन गाओ। साध के संग न मनते विसरे, साध संग सर्प निस्तरे। साध के संग लगे परम मीठा, साधु कै संग घट घट डिठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी।

मान के संग न जावे। बहु लश्कर मानु को ऊपर करे आज पल भीतर ताका हुए विनाश। साबते आप जाने बलवंत खिन में हो जाए पसमंत किसे नाम बदे आप अंकारी धर्म रहे तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे महान सो जन नानक दर गए प्रवान कोट कर्म करे हो तारे शर्म पावे सगले विरतारे।

सब उपदेश समझे आप या फिर रचिया सबके साथ आप किनु अपन विस्तार सब किस उसका हो करने हार उसते पहन को कुछ होए थान धनंतर एक कैसो है अपने चलते आप करने हार कौतक करे रंगो पार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने मखिया नहीं सच सच सत सब की ना कोण मदे किन विरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घड़ घड़ सुनी सरवण मखियाणी।

संत के दुखन आर जा घटे, संत के दुखन जमते नहीं छुटे, संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए, संत के दुखन मत होए मलीन, संत के दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखे ना कोई, संत के दुखन थान पृष्ठ होए, संत कृपाल कृपा जे करे नान, संत संग निंदक भी तरे, संत के दुखन ते मुख पवे, संतन के दुखन काग जन लवे, संतन के दुखन सर्व जोन पाए, संत के दुखन त्रिगत जोन क्रमाए, संतन के दुखन तृष्णा में जले, संत के दुखन सबको छले, संत के दुखन तेज सब जाए, संत के दुखन नीच नीचाए, संतो की गाथा को नाए नान, संत पावे ताए भी गात पाए,

के एक बजाने एतत गियो सोजी जाने नाम संग जिसका मन मानिया नान तिने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद आपना सुजे तिसकी जानो तिस ना बुझे।

जिसको अर्पण मंचित आवे सो संत सुहेला नहीं डलावे, जिस प्राव अपना कृपा करे सो सेवक को किसरे डरे, जैसा सा तैसा निष्ठाया अपने कार्य में आप समाया, सो दत सो दत सो दत सिज्या गुर प्रसाद तत सब बुझिया जब

सबसिस्टम आपे आप सकल में आप जगत रथाप थाप अविनाशी नाई किशखंड धन धार्यो ब्रह्मंड लख भे पर प्रताप आप जपाय नानक जाप।

जे सो प्राणी लुचे कोए तिसमें नाही तेरे किस काम गात नानक जाप एक हर नाम रूप बंद होए नाही मोह प्रभु की जो संकट सोए।

जिस गुर प्रसाद उठे हो रोग नानन सोजन सदा रोग जो मंदिर को थामे थमण दे गुरु का शब्द मने अस थमण जो पाखाण नाव चढ़त रहे प्राणी गुरचरण लगत निस्तरे जो अंधकार दीपक प्रगास गुरदर्शन देख मन होए विगास माओ ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रटावे तिन संदन की बाछो तू नानक की आलोचा पूर मन मूर काए बिल लाई है प्रभु लिखे का लिखिया पाइये दुख सुख प्रभु देवनार ध्याओ तू तेज तार जो कुछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिरे जान कौन बस थाई तेरे संग लपट रो रस लोभी पतंग राम नाम जप हृदय माए नानक बस सिद्धि कर जाए।

गया। इस पुण्य श्रद्धा सतपुरी रव रहा सब संग सूरी इसका साधन लिया मिलाये नानक भक्ति राम समाये सुख विसरे जे काल न बने सुख विसरे जे किया जाने सो क्यों विसरे जिन सब की दिया सो क्यों विसरे जे जीवन जिया सो क्यों विसरे जे अग्नि में राखे गुरु प्रसाद को बिरला लाखे सो क्यों विसरे जे बिकते कांडे जन्म जन्म का टूटा गांडे गुर पूरे तदे बजाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो यो काम आ

नाथ नाथ गोबिंद गोपाल सार्व घटा करत प्रतपाल आदि पुर कारण करतार भगत जन कह प्राण आधार जो जो जपे सोए पुनीत भगत पाए लावे मनी तब निर्गुण हार नीच जान नान तुमरी शरण पुरख भगवान।

जो जो होए सोई सुखमाने कन करावन हार प्रजाने अंतर बसे बार भी ओही नान दर्शन देख समोई आव सत किया सत्सत तिस भव दे सगली उत्पाद तिस भावे ता करे विस्तार तिस भावे ता एक अंकार अनक कला रखी न जाए जिस पावे तिस लय मिलाए कौन निक कौन कहिए दूर आपे आप या भरपूर अंतर का जिस आप जनाए नान तिजन आप बुझाए सरभूत आप तारा सर्व नैन आप देखण हारा सगल समग्री जाका तनाया अपन जस आप ही सुनाया अपन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी किन्नी माया सबके मद लिप्त हो रहा है जो किस कहना सो आपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नान जा पावे तले समाए इसते हुए सुनाई बुरा कहो कि किस करा आप लाकर तू दा निकी आपे जाने अपने जी की आप सारी सब साच उद्भोत आपन संग्राज ताकी कदमत कही न जाए दूसर होए दसो जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानके जान

जप आ सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न हो वही जे सोची लाख वार चुपै चुप न हो वही जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सह सियाणपा लख हो है ता एक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल

नयावै तोड़ कथ कथ कथी कोटि कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पा है जुगा जुगंतर खाही खा है हुक्म हुक्म चलाए राह नान विकसावे परवाह साचा साहिब साच नाए भाख्या भाव अपार आख है मंग है देह देह दात करे दातार फेर के अग्गै रखिया जद सह दरबार मोह के बोलन बोलिया जो सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार नानके वै जानिया सब आपे सचार थाप्या न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नान गाविये गुणी निदान गाविये सुनिया मन रखिया पाओ दुख पर हसु कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रिहा सुमाई गुर ईश्वर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जेहो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरना जाई तीर्थ नावा जित पावा विण पाने के नाय करे जित सिरठ पाई वेखा विण कर्मा के मिला लई मत विच रतन जवाहर माणिक जेको गुर के सिख सुने गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर

कोई। पंच परवान पंच प्रधान पंचे पाप हैंदर गहमान पंचे सोह हैंदर राजान पंचा का गुरु एक ध्यान। देखो कह करे विचार कर्तव्य क्या करना नाही तुम्हार तौल धर्म दया का पोषण तो था प्रख्या जन सोत। जेको बुझा हो सचार तब लायो पर के तापार तरती होर पर होर होर तिसे पार्थ लै कमण जोर। जी जातरंगा के नाम सबना लिखा बड़ी कलाम ए हो लेखा लिख जाने कोई लेखा लिखिया केता होए। केता तान सुआले रो केते दा जने कौन कूत किता पसाओ एको को आओ तिसे होए लख दरियाओ।

निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूरमो पाख सार असंख मोल विलायतार

हरे असंख मोर कांद कोर असंख चोर राम कोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख अलोड़ा त्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कुड़े आर कुड़े फिराहे असंख मलेच मल पाक खाहे असंख निंदे से करहे पार।

परिचनाओ इवड़ उचा हुआ को सूचे को जान सोए देवड़ाव जाने आप नानक नदरी कर्मी दाता।

अमल बख्शी सोमल निष्ठान अमल करम अमल प्रमाण अमल लख न जाए आख आख रहे लिवलाए आख वेद पाठ पुराण आख पढ़ कर बख्याण आख ब्रह्म आख इंदो आख गोपी द गोविंद आख ईश्वरी आख सिद्ध आख कित कित बुद्ध आख दानवे आख देव आख सुरना मुंजन सेवा

साचा सोए। जेको आखै बोर बिगाड़ तन के सिर का बारा गावार सो दर के हा सो कर के आजत वै सर्व संभाले। वाजे नाद अनेक शंका केते वा बनहारे केते राग परि सो कहियन केते गा बनहारे। गावा तो नु पौन पानी बै सुंदर गावे राजा धर्म दुआरे। गावा चित गुप्त लग जान है लिख लई धर्म विचारे। गावा ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे। गावा इंदन दासन बैठे देवतियां धरनाले। गावा से समाधि अंदर गावन साध विचारे। गावन जति सती संतोखी गावा वीर करारे। गावन पंडित पढ़ान रखे सुर जो जुग वेदानाले। गावा मोहनिया मन मोहन सुरगा मत पायाले। गावन रत्न पाए तेरे अर्थर तीर्थ नाले। गावा जोत महाबल चूरा गावा खानी चारे। गावा खंड मंडल भर पंडा कर कर रखे तारे। से तनु गावा ज्योत पावन रते तेरे पवित्र साले। होर केते गावन से मैं चितन आवन नान क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहेब सचा सची नाई है। पी हो सीधा न जासी रचना जिन रचाई। रंगी रंगे पाते कर कर जिनसी माया जिन उपाई। कर कर वेख्या किता अपना जब ती वड्याई। ज्योत बाबा सोई करसी हुक्म न करना जाई। सो पातशाह साहब साहेब नानक रहंद जाई। मुंदा संतोख शरण पर चोली ध्यान की करै प्रभूत। खिंता काल कुआरी काया जुग डंडा प्रतीत। आई

ना कोय। राते रते थे वार पुण पणे अग्नि पाताल तस्वे धरते थाप रखे धर्मसाल तस्वे जे जुगत के रंग। जिनके नाम अनेक आनंद कर्मी कर्मी होए विचार। सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी करम पवे निशान। कतब काई उथे पाए नानके आजा पे जाए। धर्म खंड काहे हो धर्म ज्ञान खंड काया को। कर्म केते पवन पाणी वै सुंदर केते कान महेश केते।

केते सद्वदनाथ केते केते देवी वेश केते देवदान मन केते केते रतन समंद केते अखाणी केते वाणी केते पान नरेंद केते श्रुति सेव केते नानक अंत नयंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रजन तिथे नाभनोद कोडानंद शर्म खंड के बाणी रूप तिथे काड़त कड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कतिया न जाए देखो कह पिछे बचताए तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध तिथे कड़िए सुरा सिदा के शुद्ध कर्म खंड की बाणी जोर तिथे हो न कोई होर तिथे जोत महाबल सूर तिन में राम रहा परपूर है।

जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जाप श्रीमुख वाग पातशाही दसवीं छपे छंद त्वै प्रसाद। चक्र चिहन हर बरन जात अर पात नहिंजे रूप रंग अरेख पेको कह ना सकत कह अचल मूर्त अनुपव प्रकाशम तुझ कह जय। कोट इंद्र इंद्राण शाह शहान गणिजय त्रै पवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बंत्रण कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्णत सुमत भुजंग प्रजा छंद। नमस्तम अकाले नमस्तम कृपाले नमस्तम रूपे नमस्तम नूपे नमस्तम भेखे नमस्तम लेखे नमस्तम काये नमस्तम जाये नमस्तम गंजे नमस्तम पंजे नमस्तम नामे नमस्तम ठामे नमस्तम कर्म नमस्तम धर्म नमस्तम नाम नमस्तम दाम नमस्तम जीते नमस्तम पीते नमस्तम बाहे नमस्तम डाहे नमस्तम नीले नमस्तम नादे नमस्तम छेदे नमस्तम गादे नमस्तम गंजे नमस्तम पंजे नमस्तम उधारे नमस्तम पारे नमस्तम सो एके नमस्तम अनेके नमस्तम भूते नमस्तम जूपे नमस्तम निकर्मे नमस्तम निर्भरमे नमस्तम निर्देशे नमस्तम निर्पेशे नमस्तम निर्नामे नमस्तम निर्कामे नमस्तम निर्दाते नमस्तम निर्गाते नमस्तम निर्दूते नमस्तम भूते नमस्तम लोके नमस्तम शोके नमस्तम निरतापे नमस्तम थापे नमस्तम तरमाने नमस्तम निदाने नमस्तम गाहे नमस्तम वाहे नमस्तम दुर्वर्गे नमस्तम सर्गे नमस्तम परपोगे नमस्तम सुजोगे नमस्तम अरंगे नमस्तम पंगे नमस्तम गम्मे नमस्त सतरमे नमस्तम जलाश्रे नमस्त नराश्रे नमस्तम जाते नमस्तम पाते नमस्तम माजवे नमस्त सतराजवे रे संदेशे नमस्तम पेशे नमस्त नृदामे नमस्त निर्वामे नमो सर काले नमो सर दयाले नमो सर रूपे नमो सर भूपे नमो सर खापे नमो सर थापे नमो सर काले नमो सर पाले नमस्त सत देवे नमस्तम पेवे नमस्त जन्मे नमस्त सो बनमे नमो सर गौणे नमो सर पौने नमो सर रंगे नमो सर भंगे नमो काल काले नमस्त सत दयाले नमस्तम वरने नमस्तम मरने नमस्तम जरारन नमस्तम कृतारन नमो सर धंदे नमो सतबंदे नमस्तम सके नमस्तम निबड़के नमस्तम रहीमे नमस्तम करीमे नमस्तम अनंते नमस्तम महंते नमस्त सतरागे नमस्तम सुहागे नमो सर सोख नमो सर पोख नमो सर कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर दयाले नमो सर पाले चाचरी छंद प्रसाद रूप है नूप है जू है भू है लेख है भेख है नाम है काम है देह है बे है जीत है पीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है नाद है जय है जाद है जन्म है वर्ण है भूत है भरण है अगंज है बंज है जूज है जंज है मीक है नवीक है दंद है वंदन भूज है सूज है काल है जाल है ला है जा है नंत है मंत है अलीक है निरसीक है निर्लंब है असंभ है अगम है जम है भूत है शूत है लोक है।

चतर जगर करता चतर जगर हरता चतर जगर दाने चतर जगर जाने चतर जगर भरती चतर जगर भरती चतर जगर पाले चतर जगर काले चतर जगर पासे चतर जगर वासे चतर जगर मानिए चतर जगर दानिए चाची छंद न सतरे न मित्रे न भरम न पितरे न कर्म न गाये जन्म जाये न चित्रे न मित्रे परे पवित्रे प्रति से अधि से आदिर से।

के बदूत बनने के विभूत करने के राजम प्रवाह के धर्म तुझा है के शोक बरने के सर्वा भरने के जतन कृत्य के शत्रन क्षत्रिय के ब्रह्म स्वरूपे के अनुभव अनुप के याद अदेव के आप अपेवे के चतरन वहीन के अधीन के रोजी रजा के रही मेरा आगे के बाग भी आवेंगे के अबुल गैवे के अबुल गुना है के शाहन छाए के कारण को नंदे रोजी रहने के राज करही में के कर्म करी में के श्रवण कलिये के श्रवण दलिये के सर्वत्र मानिए के सर्वत्र दानिए के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देसै के सर्वत्र भेसै के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देसै के सर्वत्र भेसै के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र त्राणे के सर्वत्र प्राणे के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेस है के सर्वत्र मानिए देव प्रधानिये के सर्वत्र जापिया है के सर्वत्र थापिया है के सर्वत्र भाने के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्रे के सर्वत्र चंद्रे के सर्व कली में के परम अब के परम पही में के अकल आला में के सर्व कली में के परम पही में के अकल अलामे के साहिब कलामे के हुसन वजू है तमामल रजू है हमे सलसलामे सली कदमदामे गनीमल शकी तेज गरीबल परस्ते बुलंदल मकान है जमीनल जमाने तमीजल तमामे रजूल ने दाने हरी फल अजी मेर जायक रजी रजायक जकीने अनेक उतरंग है भेद है पंग है जी जुलवाज है गनीमल कराज है नुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रवाह है सजू

रसावल शंत वै प्रसाद नमो नरक नासे देम प्रगासे नंगन स्वरूपे भंगम भूते परमात्म परमाते सदा संसाते गान स्वरूपे निर्वाद भूते नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी नूपे न पोतरे न पुत्रे न सतरे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते न साकं श्री कै मितो मी कै सेम प्रवाहे जय हैं जाहे भक्ति जय हैं जाहे भक्ति छंद त्वै प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है हामें सिलसिलावे समस्त गुलामे के साहिब दिमागे के सुरन चरागे के कामल करीमे के राज करीमे के रोजी रहने के राज करहने क्रीमल कुमाल है के उसन जमाल है के नीमल खराज है क्रीमल निवाज है रीफुस के न है रासल्ब के न है कलंकर बनास है समस्त निवास है गंजल गनीमे रजाय करीमे समस्त जबा

मन मेरे जवारो अन्नाले। साचे साहेबा क्या नाही कर दे रे करता तेरे, सब कुछ है जिसते सो पावे सदा सच सलाह तेरी। नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कहे नान सच्चे साहेब क्या नाही कर दे रे, साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा। जन भुखा सब गुआईया कर शान सुख मनाया वसया जन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान किया गुरु विटो जिसिया बड़िया। कहे नान सुनो संतो सब तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत।

ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया।

तुमरी गात मित तुम ही जानी। बोलना जी वाहिगुरु, एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासे हुए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिम

वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या पही अकाल की तब चलायो, सब सिखण को हुक्म है।

इच्छा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चन मारे हमारा अपना जान क्रोध द्वारा हमरे दुस्वे तुम गहो आप दे मोह बचावो सुखी वसे मोर परवारा सेवक सिख सवे करतारा मोर छान कर दे करिए सब बैरन को आसंगरिये पूर्ण होए हमारी आसा तुर पिन की रे प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याहूं जो वरचाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिय है चुनचुन सत्र हमारे मारिया बा दे मुझे वरिय मन काल का त्रास वरिय जो सदा हमारे पच्चा

सी कुमारी सकल प्रजाजने आप सुवारी सेवकन को सब गुण सो दियो शत्रन को पल मोहित कियो कटकट के अंतर की जानत पले वरे की पीर प्रशांत चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दिशका भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कड़कड़ के पटपट की जाने जबद कर करा कर धारा प्रजा धर तब दे अपारा जब कर दो कबू तुम मिल दे तर सबू

कोई बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास सहाय। अर्जन हर गोबिंद नव सिमरव श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिह जिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवे ताए। सब थाई होए सहाय। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दी नार दा ध्यान तरके बोलना जी। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती है। इस वेले श्री अखंड पाठ साहिब की संपूर्णता परंत आप जी दे पावन स्वरूप दे सुखासना की सेवा हुई है। चौपी साहिब का जाप होया है। बाणी पढ़द्या सुखासना की सेवा करद्या भुल चुक की खिमा बख्शना। इस वेले आप जी दे पावन सवारा साहब सचखंड विखे जा रहे हैं। चाले पाउंदी आग्या बख्शो रस्ते विच वाद कर दे साई होना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

की हो जाता, गल खाण दी नहीं है, गल बचन मनन दी है। महाराज जी दे घर दा सिद्धांत है सत करके बचन मनना। गुरु नानक देव साहिब महाराज आखरी प्रीख्या बाबा लहणा जी दी, कहिंदे आ मुर्दा पिया खाओ। हुण मुर्दा कोई खाण वाली चीज है? मुर्दा पिया खाओ। महाराज आग्या दिओ सिर वाले पास्यों खाना शुरू करांगे पैरां वाले पास्यों। गल बचन मनन दी है। ज्यों ही बस्तर चुकदे आ थले कड़ा प्रसादी दे, आखो सतनाम।

माता गंगा नूं याद रखदे आ, अपने नगर दी धी और अपनी अपने नगर दे दोहते दी अणख नूं याद रखदे आ, कदे मूंह ना लाओगे। याद रखियो, गुरु तो वड्डा साडे लई कोई नहीं है, ना गुरु तो वड्डी कोई ताकत है, ना गुरु तो वड्डा कोई राजा, ना कोई राजनीति, ना कोई राजनेता है। याद रखना, महाराज साहब जी का त्यौहार मना रहे हो, खुशियां दे नाल मनाओ, पर उन्हां दी अणख उन्हां दी गैरत अपने जमीरां च जाग दी जरूर रखियो। इन्नियां क बेनतियां प्रवान करनियां, जिन्ना क समा अनाउंस होया सी उह हो चुका है। महाराज साहब जी मेहरामत करन बिलगे नगर मौ साहेब और फरी मौट की समूह संगत के सिर ते मेहर भरिया हाथ रख के सतगुरां दा प्रेम, सतगुरां प्रति भावना, अदब और सत्कार की दात बख्शन। इन

हां जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज जो बच्चे ने राग सिलेक्ट किया है वो है सदा सुहागन राग भैरवी। इस राग का जो समय है वो 24 घंटे च इनू गाया बजाया जा सकता है। और धन गुरु अर्जन देव महाराज जी का विशेष महान विवाह पुरब मनाया जा रहा है, तो बच्चे ने राग भी सही सिलेक्ट किया है। खुशी का राग है राग भैरवी, सदा सुहागन राग भैरवी दे विच बच्चे शान बजाएंगे।

आओ एक शब्द होर श्रवण करिए। हर प्रभ काज रचाया गुरमुख व्याहन आया। हर प्रभ काज रचाया, कोई भी धर्म होवे, दुनिया के जिन्ने भी मर्जी धर्म ने, उस च व्याह आनंद कारज की मर्यादा पक्की है। भावें मुसलमान है भावें हिंदू है, हिंदू व्याह करते हैं, साढ़े सिखां च असी इस नूं आनंद कारज कहिंदे आ, मुसलमान वीर निकाह कहिंदे ने। तो धर्म का कोई भी अंग होवे उस च ये रस्म मर्यादा अलग अलग हो सकती है, लेकिन यह जीवन के पंथ के विचों निकलना ही पैंदा, संसार है। तो गुरु अर्जन देव महाराज जी अज के दिहाड़े जो आप जी मिला मना रहे हो, उन्हों का विआह पुरब खुशी है, प्रसन्नता है, उमा है, चाओ है, मंगल है, खेड़ा है। उस खेड़े के संबंध में ये मंगलामयी बाणी असी गायन कर रहे हाँ, और शब्द बड़ा प्यारा उन्हों का अपना ही उच्चारण किया होया। राग भैरवी दे बंदिश आधारित है, बंदिश भाई साहब भाई गुरमेश सिंह जी की यह तर्ज है, मैं बड़े प्यार ना गाउना हाँ।

ज्ञान कौन आया? खुद आप परमेश्वर। धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी परमात्मा खुद आप परमात्मा सरगन स्वरूप दे विच प्रगट होए ने इस धरती दे उत्ते। और कोई कहिंदे ने कि रब वर्गे रब दी न्याई, पर ये भी लफ्ज़ जेड़े ने पूरे नहीं। गुरु अर्जन देव महाराज आप खुद आप ही रब। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी बारे पट लिखते ने, बड़ा कीमती वचन है श्री गुरु ग्रंथ

बोले सोनिहाल। बोले सोनिहाल। सो एक बार फिर हजूरी कीर्तनीय भाई साहब भाई सरबजीत सिंह होना दे समूह जथे का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सोनिहाल बहुत बहुत धन्यवाद। हुण आप जी दे सन्मुख बिलगा निवासी भाई साहब भाई कमल जी सिंह बिलगा भाई गुरनाम सिंह जी पंडाल उन्हां दा ढाडी जथा आप संगतां दे नाल गुरु पातशाह दा पावन इतिहास सिख इतिहास आप जी नूं सरवण कराएगा। इन्हां तों उपरंत साडे पास जो कि पिछले एक हफ्ते तो ढाडी जथा भाई साहब भाई अमरजीत सिंह जी जौहल बिधीपुर वाले जो कि पहुंचे हैं उन्होंने हाजरी भरनी है। आओ हुण दीवान की फिर आरंभता करदे होया कौम दे ढाडी कौमी आप जी दे नाल गुरु इतिहास सरवण कराउणगे। आओ उन्हां तों इतिहास सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की।

0: नाम अज बिच सन सारदे जी हो
1: इतिहास का सत्कार करदे आ बेलगा निवासी और आले दुआले दीआं संगतां वालों बेंत माया आई है साडी सरैणी विचों बीबी जसवंत कौर खालसा ढाडी जिन्हां ने एक साल मेरे नाल भी ढड़ते साथ दिता है वह भी बेंत माया दे गए ने भाई साहब भाई बलिहार सिंह जी नत्तां वाले वह भी बेंत माया दे गए ने ओनू भी पहला पहला बड़ा शौक सी उदों असीं कबीचड़ी करदे हुंदे सी कबीचड़ी करन दा पर एक भगती है इहदे विच पूरा उतरना इहदे विच काम करके किसे स्टेज नूं पाउणा बड़ा औखी गल है ये राह बड़ा औखा सच दा राह है इहदे विच बड़ी वारी इम्तिहान हुंदा बंदा डोल जांदा सो ओह भी बेंत माया दे गए ने छेती थोड़ा चिर कमीशनी की छड़ गए सो होर संगतां वालों सरदार सुरिंदर सिंह जी बिलगा वो भी बेंत माया दे गए ने उन्होंने साथियों वालों भी बेंत माया आई है साडे ढाडी सराणी विचों आ भाई साहब भाई कुलदीप सिंह जी अमरजीत सिंह जी जौल उहदे सारे साथी भी बेंत माया दे गए ने सो पातशाह मालड़ी तो चल के शंकर गए शंकर तो भंगाले गए भंगाले तो बिलगे पहुंच गए कई बार असी बरते सराप विच फस जाने इस गल तो सानू पातशाह ने बाहर कढ़िया सी वे सराप ना दी कोई चीज नहीं ते नाले जिहनू गुस्सा ही आ गया गुस्से विच आके किसे नू सराप दिता वह भगत ही नहीं हो सकता वह संत नहीं हो सकता वह कोई गुरु नहीं हो सकता क्योंकि नाम जपया जांदा मन दी शांति लई ते जे नाम जपन वाले नूं गुस्सा आ गया फिर नाम जपन दा भी कोई फायदा नहीं पातशाह बिलगे गए बिलगे वालिआं ने बड़ी सेवा कीती वैसे उन्हां जमाना विच इहो जिहा साधन नहीं सी फिर भी जदों पातशाह उत्थे गए सत कुलियां हुंदियां सी उन्हां नूं चाह चढ़ गया पातशाह नूं देख के नमस्कार कीती है चाह पानी पिलाया जो सेवा उन्हां कोलों होई जथा सख्त उन्होंने कीती है पातशाह बड़े खुश होए संगतां दर्शन करके निहाल हुंदियां महाराज दे पवित्र बचन सुनदे ने पावन बचन सुनदे ने मन नूं शांति आउंदी है सो पातशाह नूं लंगर तैयार करके छकाया पातशाह अमृत वेले मौर साहब नूं जाण दी जदों तैयारी करन लगे ना इशनान कीता वो बस्तर उत्थे हाले है आ कल परसों उत्थे मेला सी दिखाए जांदे हर मेले ते पातशाह दा चोला पातशाह दा पजामा पातशाह दा दछाला पातशाह दी चंदन दी चौंकी जिहते बह के इशनान कीता सी सो जदों पातशाह तरन लगे ना मेरा ना मीह बरसाता बिलगे आलिआं ते पुछिआ दसो की चाहुंदे आंदे पातशाह साडीआं सत कुलियां इन्हां नूं हर साल अग लग जांदी है पातशाह आंदे नहीं अज तों बाद इह बेलगा हो गया इहनूं अग नहीं लगूगी सत्तां कुलियां तों सत दरवाजे बना दित्ते सिमरना दे के पातशाह ने रंग चाड़ दिता नाम दा लो मेरां दे बिच आ के कीड़ी कीड़ी चीज बख्शे दे ने किवें बिलगे आलिआं ते सोढी पातशाह मेहर करदे ने सारा सिंह आपदा सामने ढाडी जत्ता हे इहो बयान कर

बहुत ही सत्कार योग बाबा साहेब सिंह जी मनटीका तो बहुत ही ज्यादा प्यार वाली रूह ने सतगुरां की बड़ी वड्डी बख्शिश है इन्हां ते जिड्डे ये वड्डे ने ओडे ही वड्डे प्यार सानू बख्शे ने बहुत सारा माण करके गए ने बहुत बहुत तह दिलो धनवादी हाँ जी वडभागियो आप गल कर रहे के माता गंगा जी जिन्हां ते बख्शिशां वरतियां ने ओ वाहेगुरु दे नूर गुर अर्जन प्रतख हर उन्हां दे चरणां दे नाल जुड़े उन्हां दी जीवन साथण होण दा उन्हां नूं माण मिलिया। माण तो उन्हां नूं इन्ने वड्डे वड्डे मिले ने कि बख्शिशां दे नाल इतिहास भरिया पिया है। समां दी इजाजत देना माता गंगा जी दा निशानी वजो बहुत कुछ जिहड़ा है गुरसिख प्यारियां ने सांभिया होया है। बिलगे दे विच भी बहुत कुछ जिहड़ा मिल जांदा है, माओ साहिब भी मिल जांदा है। बाबा आकल जी जिहड़े के उस वेले रथवान सन, जिस रथ ते धन गुरु अर्जन देव महाराज जी व्याहुण गए ने, यह रथ गुरु रामदास महाराज जी नूं कश्मीर दे गुरसिख प्यारियां ने भेट कीता सी। गुरु रामदास महाराज जी नूं इह रथ भेट कीता, इस रथ ते धन गुरु अर्जन देव महाराज जी व्याहुण गए। इस ही रथ दे उत्ते धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी व्याहुण गए। यह रथ गुरु हर राय साहिब जी तक गया ते इतिहास दसदा है कि यह रथ जदों राम राय ने दिल्ली नूं जाना सी उस वेले भी धन गुरु हर राय साहिब जी ने जदों बख्शिशां विखालियां कि तैनूं आ बख्शिशां दे नाल नवाज के भेजना है तां उस वेले सतगुरु वल्लों मिलियां ताकतां दी परख करन वेले हर राय जी ने बेनती कीती रथ नूं कि बिना घोड़ियां तों तुर के विखा। रथ बिना घोड़िया तो चलिया ते जदो वापस ए पिंड भाई रूपा आया है ना, उस वेले भी इतिहास दसदा है कि बिना घोड़िया तो ए रथ आया। अजकल ए रथ जड़ा है पिंड भाई रूपा विखे है। ए भाई अकलिया जी दे खानदान दे विचो परिवार है जेड़ा जेड़े के उस वेले रथवान सन भाई अकलिया जी। इतिहास लंबा है, भाई अकलिया जी दे नाल भी बड़ा कुछ होया। उन्हां दी इको एक पुत्री सी, ओह किवें सखी सरवरियां दे व्याही जांदी है ते ओदू बाद उस परिवार ते फिर किवें कृपा हुंदी है। धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दी लंबी कहानी है। सो गुरु प्यारियो आओ असी इतिहास दी गल इत्थे की समेट के गल करन लगे हां। पत्ता पत्ता सिंघां रवैरी दी सरकारां चाहे जेड़ियां मर्जी होण, लोकां दा खून पीना यह अपना हक समझदियां ने ते सच दे कोलों डरदियां ने। सिखी जेड़ी है सच दा प्रतीक है, इस लई सरकारां मुढ कदीम होई सिखी दियां वैरी तुरियां आउंदियां ने। चाहे वह मुगल हकूमत सी, ओने भी सिंघां दे सिरां दे मुल पाए ते चाहे अंग्रेज हुकूमत सी ओने भी सिंघां दे सिरां दे मुल पाए। 1922 दे विच बब्बर अकाली लहर बनी, 1923 दे विच उन्हां ने वड्डे वड्डे जावर सोधे ते उस वेले बब्बर अकालियां दे सिरां दे मुल पाए, अंग्रेज हुकूमत ने पाए। उन्हां ने किसे दे एक मरबा, दो मरबे, तीन मरबे, चार मरबे, एक मरबे दे विच 25 खेत जमीन हुंदी है, जानी 100-100 खेत जमीन ते 3000 रुपया किशन सिंह गणगज दे सिर दा अलग तो नगदी मुल रखिया गया। चार मरबे 100 खेत जमीन ते 3000 रुपया
ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 40-50 ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਖੇਤ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਏ। ਵਕਤ ਆਇਆ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ। ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਰੱਖੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ, ਸਿੰਘ ਰੂਹ ਪੋਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਜਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ, ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸ਼ਾਮੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਦਾ ਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਇਸ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਏ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮਰਵਾਏਗਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੀ ਹੈ।

0: साहेब क्या नहीं कर तेरा साजना मेरा आधार
1: साजना में आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया
0: कर जात सुखमन आए बस आज इच्छा सब बजाइया
1: सादा कर बाल किता गुरविट हो जस दिया ए वडियाइया
0: कहे नानक सुनो संत हो शब्द तरो पे हारो साजा नाम मेरा आधार बाजे
1: शब्द तित करा सपा गए शबाद वाजे कला जित कर तारिया
0: पंच दूत तित वास कीते काल कंट कमारिया
1: राम पाया तुद जिन को से नाम हर कह लागे
0: है नानक तैस को आतित कर अनहद वाजे
1: आनंद सुनो वट पागियो सगल मनोरथ पूरे
0: पार ब्रह्म ब्रह्म पाया उतरे सगले मसूरे
1: दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी
0: संत साजन पे सरसे पूरे गुरते जानी
1: सुनते पनीत कहते पवित सत गुर रहे आपर पूरे
0: बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद दूरे सलोक
1: गुरु पाणी पिता माता तरत मात
0: दिवस रात दोए